0: ये तो दरे रिसाय छन गोलेमन खाई
1: खै यति करलान्दन नगाउने के गठे
2: मुहा बिराली छ क्या
3: हे के भनम खै